0: हेलो हेलो,
1: हेलो।
0: हाँ गच्छुक तर शिकमंदनी तर शिकमंदनी अजी मस्सेंदे कोत। हेलो,